महाराज इन्हां दे पखंड दा पाज उधेड़न वास्ते हजारां सैकड़े मील चल के गुरु महाराज उत्थे पहुंच जांदे सन। कल कुरुक्षेत्र की गल की सी तो मैं थोड़ा जिहा अगे तोरां ते हरिद्वार बारी भावें तुहानूं घटना जी सारिआं नूं याद है, मैं फिर एक बार रिपीट करा दवां। इतिहास वार वार रिपीट करा रहे हैं और जिहड़े असीं तुहानूं असीं चाहे गुरु कलगियां वाले पातशाह दा होवे बाबा बंदा सिंह बहादुर दा होवे तुहानूं नहीं आउंदे हुंदे, उही असीं वार वार रिपीट कराउंदे हुंदे आ वी असीं जींदे रहीए, असीं जागदे रहीए, असीं भुल ना जाइए। हुण जे इह साखियां तुहानूं सतगुरां दीआं सांझीआं करांगे ते इहदे विच्चों कुझ ना कुझ सानूं निकलेगा वी असीं किते उदां दे कर्मकांड असीं ते नहीं करदे, धर्म दे नां ते कोई असीं ते नहीं पखंड करदे। हुण धर्म दे नां दे उत्ते हरिद्वार दे विच विसाखी का दिन, हर विसाखी के उत्ते पांडे लोग इकट्ठे होया करते सी ते लोकां नूं भी सद लिया जांदा सी आयो, और जिन्हां दे बजुर्गां नूं मापिआं नूं मरिआं नूं हले साल नहीं सी ना होया हुंदा उदों दी उहनां दी अपॉइंटमेंट हुंदी सी भी आयो उत्थे। उह कारण असीं तुहानूं दसांगे, तुहाडी बेबे तुहाडा बापू तुहाडा पापा हले राह च बैठा गजरे पहुंच गया उह की मंगदा। ते सतसंग जी अग्ञानी लोग वहमी लोग पखंडी लोग इन्हां पांडियां दे कोल जांदे सी ते अपने आप नूं लटाउंदे सी ते इसे तरह यह पांडे भरम की दुनिया के सामने करते सी कि सूरज वालू सूरजे नूं सूरज नूं देवता समझ के उधर नूं पानी झटिया करते सन, पुछण ते की कहिंदे सी इह पित्तरां तक पानी पहुंचदा, जिहड़े मर चुके ना उहनां ताईं इह पानी पहुंचदा, जो भी ब्राह्मण नूं खड़ाया जांदा सी ना उह भी पित्तरां ताईं पहुंचदा सी ते पानी झटिया भी ब्राह्मण ताईं पहुंचदा सी। ते धन गुरु नानक महाराज वह रब्बी जोत वह नडर बब्बर शेर इस जगह ते पहुंच जांदा। हुण पांडे चढ़दे वल नूं मूंह करके पानी सड़दे ने ते धन गुरु महाराज उहनां नूं पिट उहनां वल नूं पिट कर ली ते लैंदे वल नूं पानी सिटना शुरू करता। दो मिंट सिटिया आले दुआले पांड्या ने देखिया बे नौजवान ये की करता एक दूजे नूं कूणी मारदे, कहिंदे पुछो इहनूं की होया। हुण नाले ते पानी सिटणो एकदम बंद हो गया, गुरु बाबे नानक वल ध्यान लिया कहिंदे नौजवाना की हो गया तैनूं? सतगुरु कहिंदे मैनूं तां कुछ नहीं होया पंडित जी, की तुसीं की चक करदे हो तुहानूं की होया? कहिंदे इह की करदा? सतगुरु कहिंदे तुसीं की करदे हो? कहिंदे असीं सूरज देवते नूं पानी दिंदे आ कि उह की हुंदा और उहदे नाल की होवेगा? कहिंदे साडे पित्तरां तक पहुंचेगा, मर चुकियां तक पहुंचेगा। गुरु प्यारिओ इह भरम हजे तक वी ने, असीं उसे ही ब्राह्मण वाली संस्कृति दे विच्चों सिख भी निकले ने और किसी ना किसी तरह गाए बगाए साडे उत्ते भी अजे तक इस चीज़ का असर है। हुण प्राणी कोई सिखां दे घर भी चढ़ाई कर जांदा ना ते सतसंग जी जिहड़ा दसवें महीने मरण तो एक साल होण तो भावें दस दिन अगों पाठ रखाया जाता ना वह ए ब्राह्मण वाली सुरती है बस ये पौने साल का जिन्हों से साडा जगत पौने साल का कहिंदा पौना। ब्राह्मण यह कहिंदा हुंदा सी ना भी साल बाद जाके पहुंचदा आ जिहड़ी मर चुकी रूह है ना साल तक जाके पहुंचदी आ ते पौने एक साल तक पता लग जांदा सी कित्थे क पहुंची हुई आ ते फिर पहुंचाउण वास्ते ब्राह्मण दे अगे मिन्नतां करनियां पैंदियां सी। ते गुरु प्यारिओ हुण उही काम असीं सिख वी कर रहे हां वी बाबा जी आपां बापू दा बेबे दा भापे दा बीबी दा पौने साल वाला खंड पाठ रखना जां पाठ रखना सुखनी साहिब दा पाठ करना गुरु प्यारिओ अजे तक नहीं निकल सके असीं। गुरु महाराज की कहिंदे ने? कहिंदे तुसीं इधर लोकां तों पाणी सिड़दे हो, कहिंदे साडे वड्डियां नूं पित्तरां नूं पाणी दे रहे हां। ते गुरु महाराज फिर उदों उन्हां वल्लों ध्यान हटा के फिर जोर जोर दी झट्टण लग पए इधर नूं पाणी। कहिंदे जवाना हुण ते दस दे तूं काहदे वास्ते इधर दा सातों ते पुछ लिया असीं अपने पित्तरां नूं पाणी दिंदे तूं काहदे वास्ते इधर नूं दिंदा? महाराज कहिंदे पंजाब विच मेरी खेती आ और बारिश नहीं हुई उत्थे ते मेरी खेती सुकदी सी ते मैं सोचिया उधर नूं पाणी दे दईए खेती नूं पाणी दिंदा। ताड़ी मार के हस पिया कहिंदे जवान हिल गया जी कहिंदे जवाना तेरी सुरत टिकाणे है पहुंच जू तेरा पानी उत्थे कित्थे आ तेरी खेती? कहिंदे पंजाब विच कि दूर आ कहिंदे 350 मील होनी आ कहिंदे पहुंच जू उत्थे।

ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੈ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਕਿਆ ਏ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੁਕਤ ਬੰਦ ਸਭ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਮੁਕਤ ਕਹੀਐ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋ ਜਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਗਹਿਣ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੱਚੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੇ ਸੇ ਮਨ ਮੁਖ ਕਹੀਐ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਰ ਜਨ ਮਾਇਆ ਮਾਹਿ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ, ਕਾਲੇ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਅਤੁੱਲ ਕਿਉਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ। ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਕੂ ਹੋਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਣੈ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਆਪ ਸ਼ਰਾਫ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਆਪ ਚਲਾਏ। ਆਪੇ ਤੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਏ ਕੋ ਸੋਏ। ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੂਪ ਸਭ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਨੋ ਮੇਲੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਏ ਲੱਗੈ ਤਿਸ ਆਏ, ਸਭ ਸੱਚ ਦਿਖਾਲੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਆਪੇ ਲਿਵ ਧਾਤ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਪੇ, ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਏ, ਆਪੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੇ ਬਹਾਨਾ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨਾ ਰਹਾਉ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚੈ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਵਖਿਆਨਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਜਿਉਂ ਆਪ ਚਲਾਏ ਤਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਲੈ, ਜਿਉਂ ਹਰ ਭਾਵੈ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਤੇਰੇ ਕਾਮਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ ਮਹਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਭਵੈ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੂਰਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੈ, ਵੇਖੋ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਮਹਿ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਤ ਕੋ ਤਰੋ ਗੁਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੋ ਮਤ ਆਵੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਰਹਾਉ। ਚੌ ਜੁਗਾਂ ਕਾ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜਾ, ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਜਤ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਾਂ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੋਦ ਦੇਖੋ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਜਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਨਾ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਏ, ਚੁਕੈ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਮਾਨਤ ਪਾਹੇ ਨਿਧਾਨਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਤਿਤ ਕਰ ਬਿਲਾਵਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ।
मंगल नारी गां वै आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हों तिन बलिहारै जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाइयै। हर गुण गावै सहज सुभाए, रहाउ सदा रंग राते तेरै चाए। हर जीव आवसै मन आए, आपे शोभा सद ही पाए। गुरमुख मेलै मेल, मेलै मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए, निज करवासा हर चरण हर गुण गाए। रंग चलूलै हर रस पाए, रंग कदे ना उतरै साच समाए। अंतर शब्द मिटिया अग्ञान अंधेरा, सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा, नानक नाम दृढ़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा, पूरे गुर ते वड्याई पाई। अचिंत नाम वसिया मन आई, हों मैं माया शब्द जलाई। दर साचै गुर ते शोभा पाई, जगदीश सेवो मैं अवर न काजा। अन दिन आनंद होवे मन मेरे, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहाव मन की प्रतीत, मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई। जीवन मरण को संसर वेखै, बहुड़ न मरे ना जम पेखै। कर ही मैं सब कोट निदान, सतगुर दिखाए गया अभिमान। सद ही लागा सहज ध्यान, अन दिन गावै एको नाम। इस जुग मैं वड्याई पाई, पूरे गुर ते नाम ते आई। जां देखा तां रहा समाई, सदा सुख दाता कीमत नहीं पाई। पूरे भाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निदान दिखाया। गुर का शब्दत मीठा लाया, नानक त्रिशन बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा, घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों परेरे त्यों करना। ज्यों नटुआ तंत वजाए तंती, त्यों वाजै जंत जना। जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया। हर हिरदय हर बसना रहाओ, माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी। रख ले वो जन अपना, ज्यों प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो। हर राख्यो हर शरणा, कवन कवन की गत मित कहिए। हर किए पतत पवन्ना, ओठो वै ठोर हाथ चम चमरे। हर उधरियो परयो शरणा, प्रभ दीन दयाल भवतारण। हम पापी राख पपना, हर दासन दास दासम करियो। जन नानक दास दासन्ना, बिलावल महला चौथा। हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती, शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर, हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन भज राम नामै रामा, गुरमता रस पाइए होर त्यागो ने फुलकामा। रहाओ हर जन सेवक से हर तारे, हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर, हर जपिए वडे करमा। नामहीन त्रिग जीव ते तिन वड दुख सहमा। ओए फिर जून पवाइए, मंद भागी मूड़े अकर्मा। हर जन नाम आधार है, तुर पूर्व लिखे वड करमा। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, जन नानक सफल जनमा। बिलावल महला चौथा, हमरा चित लुप्त मोह बिखिया, वो दुर्मत मैल भरा। तुमरी सेवा कर ना सका प्रभ, हम क्यों कर मुग्ध तरा।
मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा। जन ऊपर कृपा प्रभु धारी, मिल सतगुर पार परा रहाओ। हमरे पिता ठाकुर प्रभु स्वामी, हर देह मती जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे, ज्यों संग काष्ट लो तरा। साकत नार होछी मत मध्यम, जिन हर हर सेव ते करा। साकत नार होशी मत मध्यम, जिन हर हर सेव ना करा। ते नर भागहीन दोहचारी, ओ जन्म मुए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी, ते नाए संतो गुरसरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी, ते नाए संतोख गुरसरा। दुरमत मैल गई हर भजया, जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो। हर हर नाम बोहित है कलजुग, खीवट गुर शब्द तरो। मेरे मन हर गुण हरि उचरो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए। मिल संगत पार परो रहाओ। काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाइए उपदेश जन करो। सतगुरु सेव सबल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बेखरसो। राम नाम रस राम रसायण, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण शूद वैश, को जापै हर मंत्र जपैनी। गुर सत गुर पार ब्रह्म कर पूजो, नित सेवो दिन सबरैणी। हर जन देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो। हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ। अनको पाव चितविए बहु तेरे, सा होवै जे बात हुवैनी। अपना भला सब कोई बांछे, सो करे जे मेरे चेतना चतैनी। मन की मत त्यागो हर जन, एह बात कठैनी। आन दिन हर हर नाम त्यावो, गुर सतगुर की मत लैनी। मत समत तेरे वै स्वामी, हम जंत तू पुरख जतैनी। मत समत तेरे वै स्वामी, हम जंत तू पुरख जनतैनी। जन नानके प्रभ करते स्वामी, ज्यों भावै तिवें बुलैनी। बिलावल महला चौथा। आनंद मूल त्यायो परखोतम, अन दिन अनद आनंदे। धर्म राय की कान चुकाई, सब चूके जम के शंदे। जप मन हर हर नाम गोबिंदे, वड भागी गुर सतगुर पाए। गुण गाए परमानंदे रहाओ। साकत मूड माया के बधिक, विच माया फिरें फिरंदे। त्रिशना जलत किरत के बांधे, ज्यों तेली बल्द पवंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे, वड भागी सेव करंदे। जिन हर जपया तिन फल पाया, सब टूटे माया फंदे। आपे ठाकुर आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप, सब वरतै ज्यों राखै तिवें रहंदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बिलावल महला चौथा पड़ताल। घर तेरवां। बोलो भैया राम नाम, पतत पावनो। हर संत भगत तारनो, हर भरे पुरे हर भर पुरे रहिया।
जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख विसार नू रहाऊ। हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपिया हर दुख विसार नहारा। गुर भेटिया है मुग दाता हर की हमारी सफल जाता। मिल संगत गुण गावनो मन राम नाम कर आसा। भाउ दूजा बिनस बिनासा विच आसा हुए निराशा। जो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो। राग बिलावल महला पंजवां चौप दे घर पहला।

0: सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करणे सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुद आखे लख करोड़, सच्चे सब तान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच त्याइन सच, जो मर जमै सो कचन कच, महला पहला।
1: वड्डी वड्याई जां वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जां सच ने आओ, वड्डी वड्याई जां नहीं चलताओ, वड्डी वड्याई जाने आलाओ, वड्डी वड्याई बूझे सब पाओ, वड्डी वड्याई जां पुछ ना दात,

0: मेगा केताओ दीपा लोहा मंडला खंडा वरपंडा अंडर जेरस उर्पजा खाने सेत जा सुमत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जनतो पाई कै समाले सबना जिन करता करना किया चिंता पी करनी ता सुकृता चिंता करे जिन उपाया जग ते सुजोहारी स्वात स्थित दीवान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग महला पहला
1: लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान लख तब उपर तीर्थां सहज जोग बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे पुराण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करता करना किया लिखिया वन जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू।

पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैष्णहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैनलहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियों कूड़ डोबैपुर नानक वखाण।

0: स्नान का जोगल चले पाए, चौकड़ मोल अनाया भै चौके पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्रह्मण थिया, ओम वा ओ चढ़ पिया वे तगा गया महला पहला।
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पहनामिया रात दिनस जी नाल, तग कबाहो कतिए बामन वटे आए, कोह बकरा रिन खाया सब को अखे पाए, होए पुराना सुटिए भी फिर पाइए होर, नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर, महला पहला।
0: नाई मनिए पतु पुजै सलाई ससूत, दरगे अंदर पाइए तग ना टूट सपूत, महला पहला।
1: तग ना इंद्री तग ना नारी, भलके थुक पवे नित दाड़ी, तग ना पैरी तग ना हथी, तग ना जेवा तग ना अखी, वितगा पे वत्ते वड़ता गे अवरा कत्ते।

की फतेह, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासें हुई सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाय, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवे ताय, सब थाई हुए सहाय, दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब, सब थाई हुए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत, गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ, दीदार का ध्यान धर के बोलो जी, पंजा प्यारिया चौहान साहबजादियां चालिया मुक्तियां हठिया जपिया तपिया, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही, देख के अणडिठ कीता,

अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम्हें अपन बिरदर खावो। हम अज्ञान

डूबदे पत्थर तारे। वाहिगुरु जी, गौड़ी कबीर जी, मन का सुभाव मने व्यापी, मने मार कवन सिद्ध थापी, कवन सो मोना जो मन मारे।